0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City.
5: City FM
4: 89.
6: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून. तो ले आए मॉसपेल. क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
4: City FM 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa daalein.
6: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
8: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89
9: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: We are
2: City FM 89.
4: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein.
5: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
6: एक्सपोज योरसेल्फ टू अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
6: The Rush Hour with ABD.

0: It's 8:30 PM.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
1: सिटी FM 89.
3: You're listening to
4: Future Sounds.
5: Future Sounds.
4: Stay fresh, stay lit.
6: New music drops
4: right here.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: Hold on, special delivery coming through.
4: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
5: We're now live on WhatsApp.
6: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
5: It's as easy as 03142-898989.
4: Save our number now and WhatsApp us.
7: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.